ॐ श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकल संशय हराय

आधार ये करम माता पिता बंधु सख सब पिता मना जन जीवन जन ये करम भक्त जन जीवन जन ये करम राम राम राम श्री राम राम।

उठते भी नहीं कि दुआ कबूल हो जाती है। औरों को जो भी मिला वो उनके मुकद्दर से मिला है, औरों को जो भी मिला उनके मुकद्दर से मिला है, पर मेरा तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है।

वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य जप

0: बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं।
1: तानसेन रामनाम संकीर्तन चेयंडी।

निराधार ये करम माता पिता बंधु सख सब पिता मना जनर जीवन घन ये कराम भक्त जनर जीवन घन ये कराम

सो साई विठल भजो विठल भजो साई विठल भजो पंढरीनाथ पांडुरंग विठल भजो पंढरीनाथ पांडुरंग विठल भजो परती वासा साई देव विठल भजो।